0: कहा कि दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की, जब तकजीब पर अड़े रहे तो हमने उनको हलाक कर डाला।
1: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

0: और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया।
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से रास्ते का पता लाता हूँ या सुलगता हुआ अंगारा तुम्हारे पास लाता हूँ ताकि तुम तापो।

और अपनी लाठी डाल दो। जब उसे देखा तो इस तरह हिल रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। हुक्म हुआ कि मूसा डरो मत, हमारे पास पैगंबर डरा नहीं करते।

0: यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो।
1: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر

अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 CUCB की दुनिया, प्रोग्राम जावेदा जिंदगी के साथ आपका मेजबान अली अजबद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इरफान अली फानी साहब। हम बड़े एक हसास मौजू के ऊपर गुफ्तगू इस वक्त हम कर रहे हैं जो कि अदम बर्दाश्त है। और सर, हम आपने दीनी एतबार के लिहाज से आप कुछ बता रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें हम दीनी नुक्ते नजर को एक बार फिर डिस्कस करें। जिस तरह सर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, खुद भी सब्र करो और दूसरों को भी सबर की तलकीन करो, और साथ साथ खुदा ने यह भी फरमाया कि सबर करो, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। और इसी तरह हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, और वो उनकी जो सारी जिंदगी थी वो सबर तहम्मल बर्दाश्त पे, उन्होंने कभी सबर तहम्मल बर्दाश्त का जो दामन है वो हाथ से नहीं छोड़ा। और उसके बावजूद सर हम उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोताही कर जाते हैं, हम अदम बर्दाश्त हमें मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह आप दीनी एतबार से इसको किस तरह देखते हैं?
1: अच्छा, इसकी जवाब ना मैं एक मिसाल से देना चाहूंगा। वो एक शख्स था, उसके पास तीन चार अंधे आ गए। उन तीन चार अंधों ने ये कहा, जी हमने ना हाथी देखना है। थे वो अंधे लेकिन

0: अब उस देखने वाले ने पूछा, मुझे ये बताओ कि तुमने हाथी देख लिया? उन्होंने कहा देख लिया। अब पूछा हाथी कैसा था? एक ने कहा कि वो जी दीवार की तरह था जिसने पेट में हाथ लगाया था। तो उस शख्स ने, दूसरे ने कहा झूठ बोल रहा है ये, दीवार की तरह तो वो था ही नहीं, वो तो एक पिलर की तरह था। तीसरे ने कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, वो तो एक रस्सी की तरह था। चौथे ने कहा तुहानू तिन्ना नहीं पता किससे गलत था, वो तो एक कपड़े की तरह था। मतलब अब सवाल ये है कि उन चारों में से गलत कौन है? चारों ठीक थे,
1: सही।
0: चारों ने अपने अपने शऊर और अपने अपने विजन के मुताबिक जितना हाथी को महसूस कर सकते थे अपनी बसीरत के तहत उन्होंने उनको महसूस किया और इजहार कर दिया। गलत कोई भी नहीं होता, हम बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ होने को गलत कहना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ होना और चीज है, गलत होना और चीज है। मैं अगर खामोशी पसंद बंदा हूँ और खामोशी में रहना पसंद करता हूँ, तो क्या मैं इसलिए दूसरे शख्स से नफरत करूँ क्योंकि वो थोड़ा सा सोशल बंदा है और पार्टीज में आना जाना उसको पसंद है, इसलिए मैं उसको नफरत करना शुरू कर दूँ? भाई वो है, मैं हूँ। हम दोनों के चेहरे मुख्तलिफ हैं, हम दोनों का सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, हम दोनों की परवरिश और तरबियत मुख्तलिफ माहौल में हुई है, लिहाजा हम दोनों मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं, लिहाजा इन इख्तलाफात के ऊपर गलत कोई नहीं होता। हाँ, एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे जो मुआशरे ने, जो मजहब ने या जो आपकी इखलाकी अकदार होती है ना, उन्होंने एक सरहद बना रखी होती है। जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो, वहां से आपका इख्तलाफ गलत होने में चला जाता है। मुआशरा कहता है कि बुजुर्गों से इस तरह से बात करनी चाहिए और इस तरह से नहीं करनी चाहिए। आप बात बेशक जो मर्जी करो, ये गलत नहीं होगा, करने का अंदाज अब आपका कैसा है, यहाँ पे चीज गलती आ जाएगी। लिहाजा जब हम अपने मजहब की बात की, इस्लाम की बात की, तो जैसे हमने ब्रेक से पहले भी ये बात की थी कि मजहब इस्लाम जो है ये तो ऑल अबाउट रवादारी का मजहब है, जो कि हमेशा यही बात कहता है कि दूसरों की बातों को समझना, जानना, बल्कि खालिक कायनात जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, ये पूरे के पूरी कायनात का निजाम जो है वो डाइवर्सिटी के ऊपर है। कहते हैं कि आओ हम अपने इख्तलाफात के ऊपर इत्तफाक कर लें,
1: सही।
0: डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो आप मुख्तलिफ हो, उन मुख्तलिफ होने को आप मान लो कि हम मुख्तलिफ हैं, नफरत खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि हम, मैं आपकी एक बात सुन रहा हूं और बात सुनने से पहले ही मेरे दिमाग में यह बात है कि इसकी बात तो मैंने माननी नहीं क्योंकि मैं इससे नफरत करता हूं, लिहाजा आप बेशक सही भी बात कर रहे हो तो आपकी बात को मैं कबूल नहीं करूंगा, और पहले ही आपकी बात को सुने बगैर कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, सुनूंगा भी नहीं, उससे पहले ही मैं उसका काउंटर नैरेटिव ढूंढना शुरू कर देता हूं,
1: सही,
0: ठीक है, ताकि मैं आपको गलत साबित कर सकूं। जब आप हट धर्मी के ऊपर अड़ जाते हो ना, तो हट धर्मी के पीछे जो कारफरमा जज्बा होता है वो नफरत का होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब जितने भी, अब मैं बड़ा हैरान होता हूं जो हमारे मसलक या मजहब के मुबल्लिगीन हैं, इस्लाम तो एक सॉफ्ट, एक इंतहाई नरम और एक सलामती वाला दीन है कि मैं बोलूं तो मेरे बोलने से वो रवादारी, वो मुस्कुराहट, वो लचक नजर आनी चाहिए, बजाय इसके कि मुझे देख के लोग मुझसे बात करने से भी खौफ ज्यादा हो जाए, ठीक है, कि यार इसे बात की तो कहीं लड़ी ना पड़े, अजीब मेरा जलाली सा मैं अपना मूड बना के हर वक्त रखा करूं। तो जो इस्लाम के ऊपर रियली अमल करने वाले लोग होते हैं वो बड़े शायस्ता होते हैं, वो बहुत, वो खुदा को खौफ बना के पेश नहीं करते हैं, वो खुदा को मोहब्बत बना के पेश करते हैं, और असल ताकत वो होती है जो दूसरे के दिल में एहतराम पैदा करे। खौफ की वजह से जो लोग मेरा एहतराम करेंगे, वो खौफ होगा, वो एहतराम नहीं होगा, और वो खौफ जब खत्म हो जाएगा मेरा एहतराम खत्म हो जाएगा। लिहाजा जब मोहब्बत की वजह से मेरा एहतराम किया जाएगा तो वो एवरलास्टिंग होगा, उसके पीछे जो जज्बा है वो मोहब्बत का है, खौफ का नहीं है। पुलिस वाले से भी आप डरते हो, अल्लाह वाले से भी आप डरते हो, अपने वालिदैन से भी आप डरते हो, तीनों से जो डरने के पीछे चीज है वो मुख्तलिफ है। पुलिस वाले का खौफ तब तक है जब तक आपके सामने है, उधर चला जाएगा तो आप उसको जुगत मार के चले जाओगे, ठीक है। वालिदैन का खौफ के पीछे मोहब्बत भी है और खौफ भी है, اور اللہ تعالیٰ کی جب آپ بات کرتے ہو نا تو اللہ تو ہے ہی سلامتی,
1: وہ تو ہر جگہ موجود ہے.
0: جتنے بھی 99 نام ہیں آپ ان ناموں پہ تو غور کرو.

0: Whoa.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं? जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

बनिया मस्त रुत बसंती अंदर माही जलवा आन बिखाया बुलबुल नहर हवावां फूल भी हो गए मस्त रोज अवल में जाम जे पीता वादत मस्ती वाला बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिसदे मस्त ओ ना डरदा दोजख बोलो ना लालच जन्नत दा रखे

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. Ki duniya, ki duniya.
2: Do patte patjhad ke pedon se utre the, phir udne ki chahat mein us sehraon se guzre. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।